0: माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो दोनों.
1: इट्स अ विग. बिल्ली को जाने दो.